जब श्री गणेश भगवान नहीं मिले तो देखो गोपियों ने क्या कार्यक्रम किया। ए घर घर श्याम को घर घर

0: नारियां देवी का रूप होती है, बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, हम पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी। और कहना

0: चांद तू इतना मत चमक, ए चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम किया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी याद नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगे, बताए कैसे? यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: बाबा संतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल तलक तुम्हारा।

0: जब श्री गणेश भगवान नहीं मिले तो देखो गोपियों ने क्या कार्यक्रम किया।
1: ए घर घर चूड़ी फिरती है श्याम को, घर घर चूड़ी

0: बात सत्य है, नारियां देवी का रूप होती है, बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, हम पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोल से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी। कहना

0: चांद तू इतना मत चमक, ए चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम किया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज वाले तो हम लगे बताए कैसे, यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: बाबा संतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल तलक तुम्हारा

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही बिना अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। दोस्तों, अब समय हो गया है अपने अगले कार्यक्रम को। सो अगले कार्यक्रम में आप सब जन को बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फरमाइश में आप सब जने अपने मनपसंद के गीत सुन सकत। सो अपन लगाएं अपने नंबर को। अपना नंबर है 9219 2077 49। सो जो नंबर लगा के आप कार्यक्रम में जुड़ें और अपने पसंद के गीत सुनें।

0: हेलो। हाँ भैया, आवाज आ रही है आपको? जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो माता दिन भैया, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से?
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधाशी की मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी माता दिन भैया से वार्तालाप कर रहा हूँ, बुंदेलखंड ओरछा से।
0: जी शारदा भैया, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, रेडियो सुनने में रहते हैं व्यस्त हैं। और मथुरा वृंदावन में तो चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, पूरा
0: जी
1: ब्रज क्षेत्र लू की चपेट में है।
0: बिल्कुल सही बात कर रहे थे, भी जो ही हाल है।
1: मैं तो बस घर के अंदर रहते हुए रेडियो से चिपका रहता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ, जब कभी मौका मिलता है आप लोगों से वार्तालाप कर लेता हूँ, बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज अपन कौन सा गीत सुने?

0: भैया से और माता दीन भैया के साथ।
1: जी, और का हो रहा?
0: और सब बढ़िया है, बस रेडियो सुन रहा हूँ। लोकगीत सुन रहा था बुंदेलखंडी, और इसके बाद 12 बजे से समय हो गया तो आपको फोन लगाने लगा। बाकी तो घर परिवार में भी सब लोग अच्छे हैं। आप अपना सुनाए, आप लोग कैसे हैं?
1: बिल्कुल, हम लोग सब बढ़िया हैं और आप सब जन की दुआएं हैं कि हम लोग सही सलामत।
0: जी, बाकी न्यारी की आशीर्वाद से, बड़े लोगों की कृपा से सब लोग अच्छे से रहते हैं
1: जी
0: और अच्छे से, और ऐसे चिलचिलाती हुई धूप में भैया घर के अंदर रहे सभी श्रोता लोग तो ज्यादा अच्छा है। बाहर ना निकले क्योंकि बाहर तो लू चल रही है और लू की चपेट में आने से बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, और उन समस्याओं से बचने के लिए घर के अंदर रहें, पानी पीते रहें, ताजा भोजन करते रहें, रेडियो का आनंद लेते रहें। जी
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। तो अब अपन गीत की ओर भी चलें और गीत को सुने, तो आप सुनो, आपके जितने और
0: जी
1: साथी हैं वे भी सुने।
0: जी हमारे दस रेडियो श्रोता मित्र हैं अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेन्द्र वर्मा, राजू यादव और पुष्पा नाथ जी, बंसी राम जी हैं। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत बुंदेलखंड ओरछा से अरुण माता दीन भैया के साथ सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
1: नमस्कार।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगल।

0: हमें इस चैनल पर ही है सुनहरे
1: हेलो
2: कार्यक्रम नहीं है सर आज।
1: जी है, बताइए, आ नहीं रहा आपके मोबाइल पर?
2: नहीं अभी तक ये कोई फरमाइश आई नहीं। दर्दे दिल दर्दे जिगर ये गाना चल
1: हाँ,
2: रहा था।
1: चल रहा था जी, फरमाइश थी।
2: चलो ठीक है कोई नहीं कोई बात नहीं। मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कंदरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे हैं सर जी।
1: जी मोहन भैया, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही बढ़िया है सर जी। अभी तो खेत में ही है। हाँ
1: जी
2: सर जी बैठे थे आराम से। आप घर को जा रहे हैं? बहुत धूप का टाइम हो गया तो जा रहे घर को?
1: अच्छा,
2: हाँ भैंसा लेके खेत में थे अभी जा रहे। मैं बोला वहा थोड़ा रुकी गई कार्यक्रम शुरू होएगा तो 12:30-1 बजे तक घर तक पहुंच जाएंगे।
1: चलो बढ़िया। तो आज अपन कौन सा गीत सुने?
2: वो कच्चे धागे वाला सुना दीजिएगा।
1: कौन सा?
2: एक तेरी जवानी एक मेरी जवानी बन जाएगी कोई कहानी कुमार सानू वाला
1: जी
2: हल्का याद दी। हाँ सर जी
1: और का हो रहा अपना?
2: बहुत बहुत बढ़िया है। और कुछ भी नहीं बस कार्यक्रम सुन रहे थे। और खेत में यह है हमारी पशुपालन जो चालू है घेरना। और इसके
1: हाँ,
2: अलावा कुछ नहीं है। धूप का बहुत प्रॉब्लम है तो आराम करते हैं दोपहर से 12 बजे से घर को रहते हैं शाम के 4:30-5 बजे।
1: अच्छा
2: हाँ सर
1: चलो सही है। तो आप भैंसा के बजे शाम के खोले हो,
2: हाँ सर जी
1: शाम के ले जाओ चराबे के लिए?
2: नहीं शाम को नहीं बस एक ही टाइम।
1: अच्छा, एक ही टाइम चराते हैं उनको?
2: हाँ सर जी दोपहर को कहाँ गांव से पहले तो 1.5 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। इधर उधर बड़ी नदी है थोड़ा उधर आना पड़ता है। तो शाम को 4 बजे आए तो आधा घंटा यू पौन घंटा तो आते जाते में चल जाता है। तो कहाँ फिर टाइम नहीं मिलता फुर्सत नहीं मिलती। फिर
1: अच्छा
2: अभी सुबह आ जाते तो कैसे कभी 12 बजे तक 1 बजे तक रह जाते। हो सके तो और अगर धूप नहीं लगी तो कभी बदली आती कभी छावा दे आधा घंटा और भी रुक लेने आधा और भी रुक सकते हैं ना।
1: चलो ठीक है, ठीक है, अपन गीत की ओर चलते हैं। हमें
2: थैंक यू धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी कहाँ से? अरे
0: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। बस
1: जी, कैसे हैं मोहम्मद जी?
0: हम तो बहुत ठीक ठाक है, और आपके मिजाज कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया हैं।
0: जी, मौसम कैसा है आपके
1: मौसम धूप निकली, गर्म हवाएं चल रही हैं।
0: घर? भाई हमारे घर भी लगता है हवाएं तेज धूप पड़ रही है, 44-45 डिग्री चल रही है बस।
1: हाँ,
0: जी,
1: तो आज अपन कौन सा गीत सुनेंगे? हिल फरमाइश में
0: फिल्म का नाम है सैनिक।
1: जी सैनिक,
0: सैनिक
1: सैनिक का
0: बाबुल
1: गीत के बोल को क्या है?
0: का
1: बाबुल का घर।
0: मेरा।
1: और क्या हो रहा?
0: जी
1: बाबुल का घर छोड़ चली जी वाला जी।
0: जी जी जी जी जी
1: चलो ठीक है, और सब बढ़िया है?
0: बस ठीक ठाक है भाई, घर पर बैठे हैं, हिम्मत ही नहीं निकल रही बाहर निकलने की।
1: अच्छा, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही?
0: गर्मी
1: हाँ, इतनी गर्मी है इतनी।
0: इतनी तेज है, लाड़ी चली गई, तो
1: सही कह रहे हैं आप।
0: हवा भी बहुत ही चल रही है, सारी सड़क तो धूल धूल
1: चलो ठीक है, तो अपन अब गीत की ओर चलते हैं।
0: लगी है।

0: हेलो
1: थोड़ा लाइन में रुकिए तो। हेलो
0: हेलो जी भैया, कहाँ से
1: योगेश जांगड़े की मैं तरह छत्तीसगढ़
0: जी? योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है अच्छे हैं
0: चलो अच्छी बात, बढ़िया ही रहना चाहिए।
1: जी।
0: और आज कौन सा गीत सुनेंगे आप? हेलो फरमाइश में।
1: फिल्म राजा और रंग से सुनवा देंगे वो फिरकी वाली, तो कल फिर आना।
0: ओ खिड़की वाली।
1: हाँ जी
0: और क्या हो रहा
1: बहुत गर्मी है, घर ही में है, घर
0: है?
1: में है, बहुत गर्मी है। हाँ
0: हाँ
1: जी
0: चलो, गर्मी ज्यादा ही है
1: हाँ जी
0: तो आप गर्मी से बचने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं कि नहीं?
1: घर में रहते हैं भैया, तब तो ज्यादा उपाय नहीं लगता। जैसे बाहर जाते हैं तो हेलमेट है, टॉवल है, पानी बॉटल है, ये सब चीजें रखते हैं साथ में
0: हाँ
1: जी
0: अच्छा, पानी को विशेष ध्यान करने पर।
1: जी जी जी जी जी ठीक है भैया, गाना बढ़िया सुना दीजिए।
0: चलो
1: ओके
0: ठीक है, अपन चलते हैं गीत की ओर।
1: ओके
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: सजनों का सजन, मेरा नाम है लखन।
1: हेलो हेलो,
2: आवाज नहीं आ रही क्या?
1: जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही।
2: ओके, अब आ रही है क्या?
1: हाँ अब आ रही। बोलिए जी, कहाँ से?
2: जी मैं मुरैना मधुबनी से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: जी हरबिलास जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छी तरह से, आपकी दुआई कृपा से।
1: चलो बढ़िया है, आप ऐसे अच्छे स्वस्थ और मस्त रहो।
2: धन्यवाद।
1: आज कौन सा गीत सुनेंगे अपन?
2: उनका नाम है खानदान।
1: जी
2: नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, तू कब दिखाया
1: नीले गगन में।
2: हाँ नील गगन पर उड़ते बादल।
1: अच्छा चलो, और क्या हो रहा?
2: बढ़िया।

0: तो बैठे ही हो गए।
1: बस सौ रुपया कार्यक्रम सुविधा इधर रुपया देती है।
0: नीले गगन में उड़ते बादल।
1: जलता खेत हमारा कीकर बिछाया। रफी साहब क्या आदमी है बताइए।
0: चलो बढ़िया है। तो अपन अब गीत की ओर चलें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुना दीजिए। धन्यवाद।
0: चलो धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो हेलो
1: राम राम भाई साहब।
0: जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहाँ से
1: अरे माता दिन भैया आई से आधा बस स्टैंड लेवेड़ी जिला महुआ से बोल रहे। बढ़िया
0: जी? राजेश भैया कैसे हैं?
1: है, लपट को आनंद रह रहे बरगद के नीचे बैठे। अरे भैया
0: हाँ, फिर बरगद के नीचे में बैठे, फिर काय की लपट?
1: जगह तो लगता ही है।
0: हाँ
1: लो
0: सही है। और बताओ कौन सा गीत सुने आज?
1: आज सुनवा दो कविता याद होती है आवाज में। कविता याद होगी आवाज में। हाँ
0: अच्छा
1: बिल मालो कन्या खड़ी है दुपहिया देखना। हाँ
0: बिल मालो दुपहिया है।
1: बिल मालो कन्या
0: चलो ठीक है, और क्या हो रहा?
1: तो सब बढ़िया हो गई भाई। कितना लिए था भाई
0: हाँ
1: दुकानदार को ले गए तो चाने कैसी करनी। तो
0: हाँ
1: चाने कैसी पल रही करनी।
0: ऐसी ही पल रहे। हाँ
1: तो थैंक
0: बिल्कुल ऐसी ही बराबर। हाँ
1: यू माने का उलट गया है ठंडा से भूतवा को ठंडा का भूत नमन भूतवा
0: ए
1: की ठंडा को निकल। तुम्हारे ना तुम तो एसी में बैठे।
0: हाँ ये तो कड़की गर्मी का
1: दो बटिया नदियां तुम्हारे दो जन नहाए ठंडे में अच्छे
0: और क्या।
1: भाई साहब नहीं आया बोले।
0: अबे दूसरे काम में व्यस्त हैं, और सब जन का लगे हैं
1: सही
0: घर।
1: बात मिलेगा ना
0: देख रहे हाँ
1: गाना मिलेगा।
0: गाना तो नहीं मिलो। खैर
1: बिल मालो सिंह है अभी तो याद होगा मुझे तुम्हारे भजन टाइप में।
0: मैं लगाओ बिलमालो सैया दोपहरिया जेठ
1: अरे
0: काल
1: हाँ
0: की।
1: अभी तो याद होगी तुम्हारे ये लोगों ने हमें जन दिया है।
0: सविता यादव जी के सर हैं
1: हाँ
0: जे, तो कौन सविता नन्या मनी मनीषा है कौन?
1: मनीषा की सभी तैयार हो उनका से सभी तैयार हो गया दूसरे जन सुनो दूसरे।
0: अच्छा
1: हाँ
0: सविता जी के
1: कई
0: वहां
1: बार हमने बिल बिल ला दी गुप्ता को सुनो जाओ तो मैं हम नहीं बोल रहा बात सुन रहा कई
0: अच्छा
1: तैयार हो या बिल बाहो बिल ला दी गुप्ता
0: अच्छा
1: बिमला देवी गुप्ता भी बहुत अच्छी है। उनको खुद को हम लोग भी दें। हाँ
0: अच्छा बिमला देवी गुप्ता अच्छो गात।
1: बिमला की देवी गुप्ता हूँ या कभी दया ले दे मैं तेरी खुश नहीं है कभी दे। हाँ दोबारा लग रही तो आप
0: हाँ
1: सुनिए
0: हाँ ठीक।
1: मतलब
0: हाँ दुकान कैसी चल रही?
1: बढ़िया चल रही है। मतलब चार दिन हुई है लेकिन बन गया है बड़े कपड़े पे रहेगा आदमी आदमी को चलते थे रोटी पानी रुपया पैसा देता है। हाँ
0: अच्छा चलो बढ़िया है, करने चाहिए कुछ ना कुछ। चलो ठीक है, तो आप चलाते हैं अपन गीत को है। राम राम राम राम।
2: रेडियो में बजट तो आप सबने सुना हुई है या फिर आप सब भूल भी गए हुए हैं, लेकिन

जो भी बताओ चाह रहे कि पहले की कीर्तन में इतनी मर्यादा होती, आज के जो कलाकार एकदम पछयास जा रहे, उनसे हमारा निवेदन है कि इन गीतन से कछु सीखो। निवेदन कर रही किसान की पत्नी।

आज से 40 साल पहले की नायिका कह रही कि मैं अरज करत पर पैया अवे की गायिका गायक बेकत के तोरी अवे कत तोरी इस समय निवेदन है जितने लोग पछिया रहे उनके संगे संगे अगर ऐसा भी कछु सीखत जाओ बहुत काबे आए हैं।

0: सर जी प्रणाम
1: प्रणाम प्रणाम जी। कहाँ से
0: भैया? मैं राजीव यादव, ग्राम उपरंका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राख मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
1: जी कैसे हैं राजीव भैया?
0: हम तो भैया बढ़िया हैं। इस समय अलाउदल की नगरी महोबा चंद्रिका देवी में दर्शन के लिए आए थे और इस समय हम चरखारी बजरंगम देवी पे हैं।
1: आहा, क्या बात है।
0: तो ज्यादा समय नहीं हमें मिल पाया क्योंकि आज तीर्थ यात्रा पर थे, फिर भी समय देखा कि अभी समय है तो संगम हो जाए तो माता रानी की ऐसी कृपा कि लास्ट में कॉल हमारी शामिल हो जाए।
1: सही कह रहे, सही कह रहे। तो कौन सा गीत बनाया?

0: मैं जैसे नहीं सुन रहा हूँ।
1: कितनी दूर
0: जी? हेलो,
1: हाँ
0: ये वाला जी सुनना चाहते सर जी।
1: कितनी दूर
0: जी?
1: हाँ कितनी दूर है?
0: तू कितनी दूर है ना? बताना राज की माँ।
1: अच्छा माँ तू कितनी
0: दूर? जी जी
1: है?
0: जी जी जी
1: हाँ
0: सर जी, हमारे मित्र हैं बलवान सिंह यादव हैं और अनूप कुमार राजपूत जी ने ये कार्यक्रम सर जी आपका दिल से सुनते हैं।
1: अच्छा
0: जी
1: हाँ।
0: कुछ लाइनें टेप कर दें अगर इजाजत हो तो।
1: बिल्कुल है।
0: तुम्हारी यादों का जब यही अफसाना है, तुम्हारी यादों का अब यही अफसाना है, दिल रोता है मगर मुस्कुराना पड़ता है। जिसे चाहा था जान से ज्यादा हमने, आज उन्हीं को भूल जाना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात
0: जी।
1: चलो बहुत अच्छी बात है।
0: जी सर,
1: आप गीत सुनिए। अपन
0: आवाज कट रही है।
1: जा कह रहे कि गीत सुनिए।
0: आओ गाना सुना दो भैया, भजन ये इधर ये देवी माँ का गीत।
1: चलो ठीक है।
0: राम राम भैया।
1: हाँ राम राम राम राम, राम।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हते ही बिना अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों आप सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब साथियों ही कार्यक्रम को इतना ही समापन होबे को समय होगा है, तो अपने दोस्त माता दीन भैया को तो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति। और चलत चलत आप सुनन प्यार प्यारे से हिंदी गीतन को, लोग गीतन को आनंद। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में और भैया काशीराम के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। जी हाँ दोस्तों, कप्ताएं कार्यक्रम में अपन सब जने सुनत हैं कवि भैया की लिखी हुई कप्ताएं को। सो आज भी अपन भैया अपन कप्ताएं को सुने जो कबीर जी की लिखी हुई कप्ताएं हैं।
1: माता दीन भैया, अपन ने कविता को नाव लो, वो कविता को जब नाव लो तो अपने मन में तो खुली हुआ
0: बिल्कुल
1: काहे कि कविता जो बात अपन ना तो देखो मोसे के पाउता है।
0: सही कह रहे, सही कह रहे,
1: और ना वो बात को अपन उपकार कह पाउता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन जो देखो अपने कवि भैया ने, वो कवि जो हो गए उनने ऐसी रास्ता कविता के माध्यम से वो गा के बता दिए थे कि पूरी लाइन।
0: हाँ हाँ,
1: अब जो भी
0: बात उन्हें कने आऊ बाबे अपने कविता के माध्यम से दर्शा दे अपन तक पहुँचा दे। ऐसे जाधी कही गई कि जाना पहुँचे रवि या पहुँचे कवि।
1: तो जैसे भैया का है कि जो कविताएं हैं और जो कवि हैं जो अपनी बात को बिल्कुल भैया नेके से ऊपर तक पहुँचा देते हैं और जन जन तक
0: हाँ
1: जानकारी हो जाते।
0: सही बात है।
1: आप हाँ माता दीन भैया के देखो समाज हो,
0: बिल्कुल
1: काम हो या कोनो समय हो,
0: सही कह रहे,
1: तो उमें हर जाना अपने कवि अपनी कविता के माध्यम से बता दे।
0: हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे संदेश भी दे दे जो अपने जीवन में काम आवे वाले बातें हैं वे अपनी कविता के द्वारा अपने काव्य के द्वारा लिख के और समाज में पेश कर दे वे, जिसे के समाज सुधरे, हम सुधरे, आप सुधरे, अगर सदमार्ग पे चलें, वे सदमार्ग की बातें हैं जो कवि भैया भी लिख के और अपन सब जनन तक पहुँचाऊ थे।
1: देखो अपन ने जब बात कही जो सासों मास की ताजी है काहे के अब जैसे समाज में बैठे या घर ले तो काहो के देखो हमें कछु काहो से भैया लान देने न देने
0: है? सही है।
1: हमें काहो से तो फिर उनने देखो कितने अगर जा बात अपन मुंह से कह रहे कि हमें काहो से मतलब है।
0: बिल्कुल बात है।
1: जो कबीरदास जी ने कितने अच्छे तरीका से कही।
0: हाँ हाँ, कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना, और लिख रहे आगे कि पांच तत्व का बना पिंजरा जान

0: बोले मेरी नैना काऊ हो जाए। अब देखो काहे के भी काते रहे के हमें काऊ से कछु लेने नन्या और ना हमें काऊ से देने आना। तो का बोले कि पांच तत्व यानी जो शरीर है अपनो हाँ। वो देखो उन्हें कितने एक ही बात में बता गई कि जो अपनो शरीर बनो है वो पांच तत्व से बनो बनो
1: हाँ, बिल्कुल। और उन्हें इसके आगे लिख रहे हैं कि गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हर के बटिया से मिलना हमें लेना, के बटिया से मिलना।
0: देख कितनी बढ़िया बात। अब कहे गहरी नदिया नाव पुरानी, देखो वातन वातन में कहे गहरी नदिया नाव पुरानी और केवट जैसे मिले रहना
1: हाँ,
0: केवट जैसे मिलते रहना। देख का कह रहे देखो कितनो एक ही लेने में बता है राय दीर्घा और आम जनता का। कहे भैया सुनो बहुत ही गहरी नदिया है
1: हाँ
0: अथाए है
1: सही
0: हरी और जा भी संगे कह रहे देखो जा नाव भी पुरानी है
1: बिल्कुल
0: जा नाव पुरानी है नई नोई है
1: हाँ
0: पेड़ तो रहे तुम जातन घुसतन तेल है। उनने एक ही शब्द में कही कि गहरी नदिया नाव पुरानी और केवट जैसे मिले रहना
1: मिलके रहना
0: है काय के है मिलके काय रहना के भैया तुम इतने जा रहे और कुनु अंदेशे वाली बात है कि नाव पुरानी है और ये सुना हुई के कछु
1: सही है
0: संदेशे की बात आ जाए तो पहले हाँ। के दई कि तुम केवट भैया से मिल के रहना ऐसो हो सकत
1: बिल्कुल
0: सही बात का कितने उनने तरीके से अंगाई बढ़ा दी
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। और आगे जो लिख रहे हैं कि तेरा पिया तेरे घर में बसत है, तेरा पिया तेरे घर में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना।
0: अब एक ही बात में देखो कितने ऐत बता दे भैया है
1: हाँ।
0: तेरा पिया मेरे घर में बसत है,
1: तेरा पिया हाँ? तेरे घर में बसत है, सखी खोल कर नैना देखना नैना
0: हाँ?
1: और कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु के चरणन में लिपटे रहना।
0: कितनी नौनी बात देखो अनाई से और देखो एक ही बातन बातन में जी बात का अगर अपन कह नहीं पाओ
1: हाँ
0: कह नहीं पा रहे वो बात का न सुझाव दे पा रहे हैं वो बात का। लेकिन कबीर आश्री ने एक ही लेन में एक ही शब्द में औते बात को पहुंचा दे
1: बिल्कुल। उन्होंने हाँ। गुरु की बात कितनी बढ़िया कही कि गुरु बिन ज्ञान तो हो ही नहीं सकत। इसे उन्होंने कही के सुनो भाई साधु कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु के चरणन लिपटे रहना और जामे बोले मेरी मैना।
0: अब मैना की बात कही जो देखो एक अनाई की बात कहे कबीर सुनो भाई साधु अरे वे काके कहे कबीर अरे जो लेखक हैं वे काके ओ भैया जो साधु हैं जो उनके पद पे चल रहे जो आज भैया समाज में बैठे हैं उनसे का बोले कि सुनो भाई साधु गुरु के चरण में लिपटे हैं यानी जो मार्गदर्शन करता है अपना
1: हाँ।
0: जो मार्गदर्शन कर रहा अपन खा जो आगे की घेल बता रहा अपन खा तो भैया उनके संपर्क में अपन खा लेने
1: बिल्कुल वही गुरु है अपना
0: वही गुरु है कि नहीं।
1: और कहावत भी कही गई है बूढ़े पुराने ने कि बिना गुरु के तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं हो सकत कोनो गुण नहीं मिल सकत।
0: अब देखो बिना संगत की भैया और बिना कर्तव्य को तो कछु बात ही नहीं है। लेकिन जब कहूँ बिगड़ जात बात ये बातें तो बात जो कही है कवि जी ने कि इनके संगे तुम्हें ऐसे कितने कौन पग धन्य धारियो
1: हाँ
0: है? तो अगर कोनो बात ई बातन के अलावा बिगड़ जाए
1: हाँ
0: तब
1: बिगड़ी बात
0: कैसे बने
1: है? सही कह रहे तेरी बिगड़ी बात बन जाई
0: हाँ
1: है कितनी बढ़िया बात लिख रहे कबीरदास जी
0: कि तेरी बिगड़ी बात बन जाई और हरी नाम जपा कर भाई इतने नौने शब्द है
1: सही
0: और शब्द के संगे संगे सम्मान लगाते
1: हाँ
0: और उनको एक आइडिया बताते। अब का बता रहे कवि जी के कैसे तुम ऊपरे
1: हाँ अब अगर तुमने हाँ। जो अपने जीवन में कछु अच्छे

0: काम नहीं करे, कोनो घट काम करे, अगर आपकी लेन बिगड़ गई, आप भगवान में या फिर भक्ति में आप अपनो विश्वास नहीं रख रहे, तो अगर अपने जीवन को सफल बनाने हैं, जीवन को सफल बनाने हैं, तो हरि नाम जपा कर भाई।
1: अब का है कि एक मार्गदर्शन उनने बता दो, वो मार्गदर्शन के संगे संगे और जो भी बता दो कि का करने कि स्याही सफेदी आई।
0: हाँ बिल्कुल,
1: एक स्याही ही सफेदी आई और फिर क्या
0: बनेगा भाई।
1: हाँ,
0: जब तुम्हारी सफेदी आ जाए शरीर पे, फिर तुम पे कछु नहीं बन रहे हो। अगर आप वृद्ध हो गए, फिर कोनो काम के आप नहीं रहे।
1: वैसे
0: कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि तेरी बात बिगड़ी बात बन जाई और हरि नाम जपा कर भाई।
1: एक ही बात में भैया उन्हें संदेश दे दो, का के दे कि अगर भैया देखो समझ में आ रही या तो अपनी आई रही कि अगर बुढ़ापो आ गो और मुड़ पे बाल सफेद हो गए,
0: सही कह रहे,
1: और जब सफेदी आ गई तो फिर का कह सकत,
0: सही कह रहे,
1: कह सकत कछु,
0: वो तो समय है
1: ना, तो भैया की काम में काहे ना तो अपन काम कह सकत और ना फिर कोनो कोनो काम नहीं कह सकत के अपन सोचत रहे हैं। का सोचत रहे कि अब फिर कर ले,
0: अब फिर कर ले,
1: अब फिर कर ले, अब फिर कर ले, तो सोचत सोचत में देखो उम्र भी नशा जात,
0: सही कह रहे,
1: उम्र नशा जात और समय नशा जात,
0: बिल्कुल
1: है। कविता में जो भी कही कि इनकी उम्र भी कर ले,
0: हाँ,
1: और समय भी कर ले,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अपन जिते अपन कहा पहुंचने हैं उतने बिल्कुल नहीं पहुंच सकते,
0: सही कह रहे।
1: आगे का कह रहे देखो राम नाम के बड़े आसरी,
0: आहा है कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं,
1: राम नाम के बड़े आसरी आलसी और तुम्हारी मती गई बोराई।
0: आहा,
1: राम नाम के बड़े आलसी गई मती बोराई।
0: अगर आप राम नाम के आलसी हैं तो समझ लो कि आपकी मती बोरा गई।
1: देखो कहने को मतलब कभी जी को कहे कि जो काम तुम्हें करने,
0: बिल्कुल,
1: जो कर्तव्य तुम्हें करने, अगर तू पग से समझे,
0: सही कह,
1: अगर ऊ पग से अपन तनके ही विचलित हो गए, ठीक है ना,
0: हाँ,
1: तो फिर वह मती जो अपनी बोरा गई वह फिर अपने लाने एक भैया बहुत ही खराब,
0: बिल्कुल
1: कहे कि जिते जोन अपन खान जिस जगह जाने हैं तो उते अपन है ना पहुंचे,
0: सही कह रहे,
1: सही कह
0: रहे। और सुनो तो कबीर जी लिख रहे कि आप भूले काय में रख जावा, तो ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, दुनिया दौलते माल खजाना, देखो ये कह रहे कि ये दुनिया है जा दौलत में माल खजाने में और बदिया बैल उगाई में।
1: भैया
0: भी दे रहा था
1: काग है जो भी देख रहे कि दुनिया दौलते माल खजाना, अरे जो संसार है जो भाव सागर है हर आदमी का है,
0: यही में भी तो,
1: यही में भी तो हाय पैसा हाय माल खजानो और कागज जांगा की बंजी हमारी जा सो बीघा की बंजिया है जे हमारे
0: बैल है,
1: बैल है और जे बदिया है वो जे गंग में,
0: सही कह रहे।
1: एक ही लेन में वो काबूले के जो कछु नन्या,
0: हाँ तुम्हारा कछु
1: नन्या, कछु नन्या हम जानी माया
0: संगा चलेगी।
1: अब कवि कह रहे कि जब भैया बुढ़ापो आ गए और बुढ़ापे की सब कछु कर लो वरना कछु नहीं कह पाओ,
0: सही
1: तो फिर जो भी है कि उतने जब जान लगे तो फिर अब काके रहे, हम तो जानते
0: कि माया संग चलेगी
1: है, का जानने लगे जब प्राण आखिरी पे कि हम जाना संग, हम जाना काया संग चलेगी,
0: हम जानी माया संग चलेगी और सबई यहाँ रह जाई,
1: नहीं जावा जब जानत आए कि जो अपन ने जो माया जोर जोर के धरे और जब धरी है तो कहे कि अपने संग चे जे जा, लेकिन ऐसो भैया कछु ही नहीं, ऐसो
0: कछु नहीं,
1: बिल्कुल कछु नहीं, भाई बंद और कुटुंब कबीला,
0: देखो कितनी बड़ी
1: भाई, अरे भाई बंद और कुटुंब कबीला काम ना आए कोई आई, देख रहे तुम भाई बंद कुटुंब कबीला काम ना कोई आई,
0: काय खोए भैया,
1: देख रहे
0: तो अकेले जाने
1: उते तो
0: तही रह जाने, तही भाई तही बंधु तही कुटुंब तही कबीला सब कुछ तही रहने। तो कबीर भैया जी ने बहुत ही बढ़िया जब बात लिखी है कबीरदास जी ने।

0: भाई बंधु कुटुंब कबीला काम न कोनो आई, को काम नहीं आई। इसे हरि नाम जपा कर भाई, केवल संग के लाने। एक ही बात बताई हमने, ना तुम आओ दौलत, ना माल खजानो, ना कुटुंब, ना कबीला, ना भाई, ना बंधु, को संग नहीं जाए। केवल संग जे है तो काजे है, हरि नाम जपा कर भाई।
1: और संग देखो का सोचत रहे कि उनने जो कछु बताओ है अपन का और जो उनने मार्गदर्शन दाए हैं, लेकिन कछु नहीं है। कैसो के सुगा पड़ावन गन का तारी, सुगा पड़ावन गन का तारी और तर गई मीराबाई।
0: बिल्कुल
1: उनने संगे जा भी कही कि जिन जिन भंजन ने, जिन बेनन ने और जिन लोगन ने इनके आदर्श था चलो है, और जिनने मन लगा के या कोनो बात मानी है या कोनो कथा सुनी है तो वे तर जात या उमायद पे पहुंच जात। जैसे सुगा, अरे पड़ावन गन का तर गई, अरे कितो काऊ ने भागवत या कोनो चीज सुनी तो सुन सुन के तर जात। और संगे मीरा भाई का जो लगन हती बावन की पूरी हो गई।
0: सही बात कह रहे हैं। और एक के संगे संगे कबीर जी ने और देखो कालिख रहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कर गए सदन कसाई।
1: अरे भैया का बात है, अपन ने देखो तो इतने नोने तरन एक शब्द कैसो नोनो आगा के तर गए तरन कसाई।
0: सदन कसाई, सदन कसाई की कथा बहुत ही बढ़िया कसाई है।
1: हाँ।
0: कि सदन कसाई का काम करते काशीराम भैया जी के बे अपनों का है के उनको काम हतो कि चोरी डकैती करके लूट माट काट करके और अपने घर को हम खर्च चलाऊ। तो एक दफे की बात है कि जब वे लूट मार करके अपनों जो काम चलाउते हो घर के सभी सदस्यों को खुआते कमा कमा के, तो एक बार भगवान जी उतर से निकले और भगवान जी ने कही कि आदमी को एक आप कल तो थोड़ी वक्त देना चाहिए कि जब तुम जो काम कर रहे गलत काम और तुम्हारे ये गलत काम में तुम्हारे घर के भागीदार है क्या नहीं है। तो भगवान जी उतर से निकले से उन्हें कही के जिन ने इस भगवान को फैला पत्रा सा फड़ा छुड़ू लाओ। तो उनने कही कि भैया तुम जो लूट मार काट करके कहा ले जा, उनके अपने घरे ले जा तो और अपने घर के परिवार को खुआ पिया तो हमारे घर की आजीविका चल रही। सो इनने कही जा बताओ कि हम तुम्हें सब दे रहा हूँ, चलो ले जाओ तुम, लेकिन तुम अपने घरे जाके और जितने जनन को खुआ पिया थे उन सब से जा पूछो कि हम जा हाय हत्या को ले आ रहे, मार काट करके ले आ रहे, तुम्हारे हमारी पाप में भागीदारी हो क्या नहीं है। ठीक। सो भैया जी गए, बोले यहाँ तुम भग जाओ। उन्होंने कही हम ना भागे तो हमें पेड़ से बांध दो। सो फिर वे बोले हाँ बांध दो। अब बांध के जे घर गए, घर घर भाई से पूछी और सबसे लड़का बांध से पूछी कि काय भैया तुम्हारे जा बताओ कि हम जो हाय हत्या को ले आ रहे, हम जो हाय हत्या को ले आ रहे, हमारी पाप की भागीदारी तुम्हारे बनो के ना बने। तो घरवार बोले हम काय को तुम्हारे पाप की भागीदारी बने, तुम कर रहे पाप से तुम भोगी।
1: माता दीन भैया इतने तनक कछु बात का है कि उनके दिमाग में जो कसाई है तो वो उनके दिमाग में का हती कि जो जो घर है हमारो और जो जो मोड़ी मोड़ा है ये सब हमारे आए। सब मतलब जो कछु है तो ये कहीं माया जान लगते हुए कि हम जो काम कर रहे तो ये सब हमारे संगे जी और संग के हमारे भागी हैं, तभी तो वो मार काट काट करके गलत काम करके लिया था। तो
0: सही कह रहे
1: हैं। अब उनके दिमाग में काफी बज जा कि वो जानत नहीं तो इनको परिणाम
0: का भोगत
1: का भोगत नहीं।
0: तो फिर एक बार फिर का भाव कि जब फिर उन्हें फिर छोड़ दो वो सब काम, न मार काट करी न कछु करी
1: नहीं। तो उसे ऐसे का भाव कि जब वे पूछ भी आए, हाँ वे पूछ भी आए कि काय बज्जा और जो हम हाय हत्या और जो मार रहे और जो काट रहे और जो हमें जो पाप मिलने या जो हमें कीड़ा पड़े या जो हमें
0: सजा मिले,
1: सजा मिले तो देखो सब जने खा रहे,
0: आप सबको भोगने
1: काय बज्जा। अपन का जो सब्जी भाजी लिया तो घर में सब जने खाते नहीं,
0: बिल्कुल खा।
1: अपन काम धंधो करके लिया है तो सब जने खाते नहीं,
0: सही
1: है। लेकिन उन सदन कसाई को भी क्या वो सही है तो हम ले आ रहे तो जा बताओ

0: और इनके भागीदारी हो?
1: इनके मतलब जो हमें लाभ मिले या जो हानि मिले या जो कछु मिले तो का तुम इनकी भागीदारी हो के नहीं? तो देखो भैया का जवाब मिलो सब जनन ने। भैया
0: सब जनन ने यही कह रहे कि हम नहीं भागीदारी।
1: तो उन्हें जब सब जनन ने हाथ खड़े कह रहे कि भैया काम तो तुम कर रहे, तुम भोगो।
0: हाँ है? जब फिर उन्हें कही के अब हम आस में बंद कर, और बंद करके भी एक तला के किनारे एक बरिया के पेड़ के तरफ बैठ गए। बैठ गए सो उते काहे के एक में तलजा में पानी भरो तो।
1: हाँ।
0: सो एक आदमी लगाए तो ते का ढेकड़ी पानी पी देखो ते या तीन डोंकियां। सो वो डोंकियां के चक्कर में ढेकड़ी लगाए तो ते और तलजा में ढोर जाते पानी पी देखो। सुन के अलग ढोर ते पानी पी दे आए तो वे डोंकियां उड़ी जाती और हमारी बार ढेकड़ी लगी सुबह छटक जाती।
1: तो उन्हें ढोया ना पानी ना भिगन दे वो। अच्छा वो जो घेरे हैं तो वो पानी।
0: हाँ।
1: जो पानी घेरे हैं तो वो बिल्कुल नहीं
0: भगा दे।
1: अरे भैया
0: अब जब सदन कसाई ने देखो तो उनके मन में आए के इतने पाप करे तो एक और सही।
1: अच्छा उन्हें की सौ सौ बे तो एक भी
0: और सही। तो भैया का भाव के उन्हें जैसे भी ढोल भगाए से इन्हें भगा भी बाहर में दस से उगे हो कह रहा हो सब लोग ने कहे पानी दम से पियो। अब जब उन्हें पानी पियो सो दही असी।
1: अब देखो भैया कभू कभू का हो के दूसरे के परोपकार कर भी से तो भैया जो को अपन जानते ही हैं और सभी जने जानते के खुद को
0: जब उन पशुगन को पुण्य मिलो
1: आशीष दही।
0: हाँ आशीष जब मिलो
1: हर सांस लेके।
0: हाँ जब सदन कसाई के सबरे पाप कट गए।
1: लेकिन भैया फिर
0: ऐसे कबीरदास जी ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधु
1: तर गए सदन कसाई और हरि जपा कर भाई जी।
0: हाँ।
1: रह गए ये भैया हरि को जपो जिसे अपन का आगे की रास्ता खुले। और जा भी कही के सुगा पड़ावन गण का तर गई तरी गई मीरा बाई।
0: हाँ।
1: देखो भैया जे काम जब तक अपन अपनों का तब ना करें तब तक अपन खा
0: बिल्कुल
1: ऊ चीज को लाभ ना मिले। तो ऐसा ही है
0: सही
1: आखिरी पे तो हम देखो कबीरदास जी का कहे के भैया एक काम करो फिर वे उनने ये कहीं मन में अपनाओ।
0: हाँ
1: सदन कसाई जब उतरे से आए उनने कही जब भैया हम भैया को नहीं कर दे रहे संग ना को दे रहे हो तो अब तो भजो रे भैया।
0: हाँ
1: उनके में ये कही आ गई कि अब तो राम ना
2: शुभ कर संगठन की ऐतिहासिक शुरुआत और कार्बन सिंक बढ़ाने की भारत के प्रयास शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं मित्रों आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएंगे, छोटे छोटे बिंदियों पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि हम बातचीत भी करते चले जाएंगे और हम गीत संगीत भी सुनते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण गीत को हम सुन लेते हैं पर्यावरण सुड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। साथियों, हम उन आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी लाना, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम और आप देख रहे हैं कि कारों से निकलने वाला धुआं, खास तौर पर जो हमारी मीलें लगी हुई हैं या फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ साथ में आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शहरों का लगभग 70% योगदान रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे फैक्ट्रियों की चिमनियों के माध्यम से हो, जिसमें परिवहन, भवन निर्माण, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र शहरी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बल्क योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है कि इस बात की कि सभी संबंधित हितधारक शहरों और कस्बों में टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करें और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर COP21 पेरिस समझौते जो हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रति हमें वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से लक्ष्य 11 जो है, जिसमें 2030 तक समावेशी, सुरक्षित, सम्पूर्ण और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात की गई है, जिसे हम SDG कहते हैं। जो SDG लक्ष्य 13 है, इसमें जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा भी व्यापक रूप से एक विस्तृत बहुस्तरीय एवं क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें एक स्थानीय फोकस होता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए साधन प्रदान कर सकता है। इसे देखते हुए वैश्विक महामारी के संदर्भ में विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस निम्नांकित के लिए सभी हितधारकों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। वैश्विक अभियान रेस टू जीरो और UN हैबिटेट और क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज पर विचार विमर्श और विचार मंथन करना नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को अमल करने योग्य शून्य कार्बन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व की 7.5 अरब जनसंख्या में से आधे अधिक यानी 55% लोग अब शहरों में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा खपत में 78% और वैश्विक CO उत्सर्जन

यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% से अधिक जिम्मेदार हैं। 2030 तक विश्व की लगभग 60% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी और इस तीव्र शहरीकरण से विशेष रूप से ऊर्जा खपत, औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन से वांछित उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा। यह आकलन हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा की तरह व्यापार का रवैया जारी रखता है तो धरती का तापमान 2050 में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिसमें भयावह अनुपात के बाद प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव बस्तियां, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और शहरी गरीबों के लिए असुरक्षित बनाता है। इसमें चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसमें प्रभावित लोग भी होंगे। किफायती और उत्सर्जन में आक्रामक कमी आने की कार्यनीति के साथ कम कार्बन वाली संसाधन कुशल हरित व्यवस्था अधिक लाभ देने के वादा कर रही है। साथ साथ में शहरी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन आकलन और अनुकूलन ढांचा विकसित करने तथा समन एवं अनुकूल कारणों के वित्त शोषण उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य उपायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि कम कार्बन फुटप्रिंट वाली भवन निर्माण सामग्री, रियायती क्षेत्रों और विकास केंद्रों की संतुलित आयोजनों जैसे कि उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम और जलवायु प्रकोप रोधी शहरों का निर्माण, ऊर्जा सक्षम भवन संहिता और प्रदूषण नियंत्रण, अपव्यय प्रबंधन आदि के बारे में हम जन जागरूकता कर सकते हैं और जन भागीदारी के हितधारकों के बहुउद्देशीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों, इस कार्यक्रम शुभ कल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं, पर्यावरण सुना। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

ओ भैया पेड़ ना कटाइयो, अभी आपने मस्ताना दिनेश मस्ताना और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से पर्यावरण जुड़ा लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। साथियों अभी भी समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अथक प्रयास करें, खासतौर पर उन शहरी क्षेत्रों जहां पर क्षेत्रवासी हमारे निवास करते हैं, शहरों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रदूषण वहीं से फैलता है, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला और चाहे वो चिमनियों से धुआं निकलने वाला, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब भारत सरकार क्या क्या आश्वासन है शहरी क्षेत्र के लिए, भारत सरकार के मंत्रालय किस तरीके से शहरी क्षेत्र के लिए काम कर रही है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जो शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए फरवरी 2019 में जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन फ्रेमवर्क जारी किया था, जो शहरों के लिए जलवायु कार्रवाइयों की

0: दिशा में एक मार्गदर्शन ढांचा है और जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार बनाने और उनके प्रति जोखिम कम करने के लिए मदद करता है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट शहर मिशन, अमृत PMAY, शहरी परिवहन आदि शहरियों को जलवायु स्मार्ट होने के उद्देश्य प्राप्त करने की सहायता करेंगे। देश में जारी विभिन्न मिशन, विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत न केवल शहरों को सुविधाजनक बनाने बल्कि शहरों में बुनियादी सेवाओं जैसे जलपूर्ति, परिवहन, बिजली, नलजल, उपचार, ठोस अपशिष्ट जो रहते हैं उनका प्रबंधन करना, बढ़ती मांगों के को अधिक संसाधन कुशल, कम कार्बन एवं आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से पूरा करने के लिए मदद करेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं जो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक और बड़े बात बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी आवास परियोजना में थर्मल कंफर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। इस तकनीकी से प्राकृतिक जो बातयान तापमान और आर्द्रता नियंत्रण में मदद मिलेगी। इमारतों की आवासीय गुणवत्ता में वृद्धि होगी और उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाना संभव होगा। इसलिए योजना एवं आवास कार्य नीतियों के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है जो समावेशी स्वास्थ्य एवं टिकाऊ आवास को बढ़ावा दे सके। परंतु इन हरित भवनों की लागत चूंकि सामान्य घरों की तुलना में थोड़ी अधिक है, इसलिए हमें सामूहिक आवास परियोजनाओं में थर्मल कंफर्ट को सक्षम करने के लिए उपयुक्त हरित वित्त शोषण तंत्र खोजने की आवश्यकता है। तो ये जो बातें हैं जो आपको हम कार्यक्रम सुपकल के माध्यम से बताने जा रहे थे। और भी बातें हैं जो चूंकि अब समय भी हो रहा है कार्यक्रम सुपकल से जाने का, अगले कार्यक्रम में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शुभ कर्म बदलती जलवायु के लिए।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमें भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तना बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते मतलब काया तुम बात करत रहो अपने साथ
1: नहीं नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ वो तुम्हारा है
1: नहीं हमारे युवा साथी ये सोचते हैंगे हाँ। के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: हाँ, और तो हमें मतलब जो या है नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हमें अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गयी ई बात को तुम्हें बुरा लगो हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटन लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी हुई थेगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछे थेगे कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काय से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी अब जैसे हम हुए कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते हैं आप इतनो ज्ञान जब बोलत हेंगे तो ऐसा लगत के तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए अब तना बता तो दो कौन सा कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम का नाम है मित्रों हम

0: ये कामयाब कार्यक्रम और जामे अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
1: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
0: हाँ, और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को, चाहे वो जैसे अपन नौकरी करने जा रहे हैंगे,
1: हाँ,
0: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी, बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं, व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं, वो यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है, आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचात हो गए, कैसे बहुत ज्यादा समय लगा थे जी चीजन को सीखने में, यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देने है वो, तो नौकरियों में ये चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके, तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: वाह वाह वाह वाह। लेकिन जो तो बताओ कि अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे।
0: नहीं, हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, हमारे यहाँ को एक फोन आ रहा है,
1: बता दो।
0: चलो, अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी, वे का सलाह दे रहे हैं, इसमें सुना चाहेंगे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे, एक चीज हम एक बारे में बताना चाहते हैं।
1: फोन तो उठा लो पहला वो।
0: नहीं, हम बिल्कुल उठाए ले रहा फोन, हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो, ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत है, उनके जो अनुभव रहेंगे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही है।
1: अब फोन कटको, आप कायम से उठा रहे हैं।
0: चलो, हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं, चलो उनसे बतकाव अपन कर लेते हैं, तो उनके खाना कराएंगे।
1: तो बात कुछ नहीं करें, आप खाना कराएंगे।
0: चलो, आप ही कर लेते रूपा जी का फोन है, आप ही बात।
1: हेलो, नमस्ते।
2: नमस्ते, रूपा रानीपुरा से, जिला टीकमगढ़ से। अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है, टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, इसमें कपड़ा भी आए हुए हैं तो कपड़ा की सिलाई चल रही है, सिलाई सीखेंगे अब।
1: अच्छा, यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं।
2: हाँ।
1: तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ, जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था, वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा, वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
1: जी,
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
1: जी। तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
2: हाँ, ऐसे गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
1: जी,
2: उनसे हमने संपर्क किया, तो फिर उन्होंने उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गांव में आ गए, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
1: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा।
1: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
2: नहीं।
1: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही खाली घर में।
1: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
2: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए हम मजदूरी करने, घर ही में रहे और बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे और बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
1: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
2: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
1: अच्छा जी, तो दिन के 60

0: 65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ खर्चे होते, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
1: हाँ सर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी, बिल्कुल।
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसे ही पुराने फीस थे ना होने से लाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे हैं थान की थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे। जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे, उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए थी, काट के दिए थे उन्होंने
0: जी। कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़के?
1: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलकर सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाले भी हैं कुछ, बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करें, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो, कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे भी
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं
0: जी,
1: उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी जी,
1: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते,
1: नहीं ले सकते ना। फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई, हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है
0: जी,
1: तो हमें जानकारी हुई
0: जी। रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
1: नहीं, किया अभी नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया
0: जी,
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं?
1: हाँ, वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
0: ये चीजें आप बना लेती हैं?
1: हाँ, ये 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गाँव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा के लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
0: अच्छा,
1: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा,

0: लगा तो सब घर घर हो गए, टेलर घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे आपके मन

0: तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बरसती जी एक बात और बता कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे न बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता। ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे हो मैं
1: जी,
0: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है? इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
1: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
0: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
1: जी तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
0: हमें तो फिर हाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं हमें बढ़ाओ ताकि हम दो पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़ के।
1: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती है,
0: कर सकते हैं। लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारे साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
0: कर सकते हैं, इसीलिए सोच रहे हैं। लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए आगे, यही की यही रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके लिए बस कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे, लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: कहावत सा तुम तो इतनी मोरी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पतो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं,
1: हम
2: सोच ही रहते हम कमरे में आज कौन सा व्यवसाय दें कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके ऐसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा थे, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे, ये सारी बात जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उन्हें कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है, और उन्हें किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रही है, वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन हो रहे सीख तो ले थे, मतलब जैसे कि तुम सुनी क्या रहे होते जो चीज

0: नहीं हमें तो सीख भी जाना सीख भी, सुबह होते है ना नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सका, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो। क्या आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो महत्वपूर्ण हतो, तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, दो या तीन चीजन को बहुत से वक्त, एक तो हो जाते है वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगत है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काय अटकती, हम तो कहत आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जे मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
1: अरे ज्ञान की देवी अब हाँ। तनक रुक जाओ और हमारे साथ तनक सांस लें दो और जब लोग गीत सुनन दो हो कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान देत चली जाओगी, तो हमारे साथ ही क्या कि हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे।
0: हाँ, मतलब तुम तो मैं बोलन दो सो का सुनेंगे
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवाते हैं अपने श्रोता साथियों को जो नो नो सो गजल को अपन गजल को सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात या कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा था वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें ही दे सका थोगे, कहेगा हम बोले सो फिर कहते ज्ञान दे रही।
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे, साथ हम को बस पूछ वो चाह रहे हैंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे है? जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसो मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे, तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो अजीब कहीं जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें।

0: या फिर व्हाट्सएप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय किला में बना है वो जैसे रूपा जी ने अनुभव देंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है वो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा है वो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं।
1: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
2: बिल्कुल इस प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने है तो बुलाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
0: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
2: अरे मनीष भाई सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ।
0: ऐप हमारे श्रोता साथी के पास
2: जानत है?
0: नहीं नहीं जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से क्या वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पर भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुँच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहाँ पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहाँ भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाना है वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड को लोगो उपलब्ध पाओगे, बाको डाउनलोड करो और चाहे इतने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी ज्ञान की बात उनको सुन सकते हैं।
2: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनवे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनवे के लाने, आप डाउनलोड जरूर कर भे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जो शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर ले रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाय बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा है कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम

0: तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है। लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।
1: ¶¶

0: सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
0: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सर

सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक, पंचायत से संसद तक बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक,
1: घर से पंचायत तक,
0: हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों, हम सबको

0: सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और काका मुझे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदनी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
6: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे, तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है, और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए, और क्रियान्वयन मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद पे कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, यह सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहां पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार

0: प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है,
1: बिल्कुल
0: अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब
1: बिल्कुल
0: सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए ये तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के। तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेके सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत।
2: गांव में किते किते और का काम उज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। अब तो दोस्तों समझ गए होंगे, अब एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है? ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी वाल इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम, यानी कि ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है ये काम देखेगा,

0: काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं। जब भी ग्राम सभा होती, ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनवाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती है कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपकी हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है
1: 92-19-20-77-49।
0: तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: झंडा तिरंगा हाथ में लेके।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जान बैठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सैलसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भैया। आज भी जो प्रतिवर्तीय फसलों में लगने वाले जो कवकजनक रोग है, उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिवर्तीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं, उनमें मधु रोमिलासिका, चूर्ण लासिका तथा उपका, यह जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने

0: मधुरमल आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में रोग अधिक देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है, और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मधुमेह आसिता का विशेष प्रभाव वैसे तो कद्दू और ये फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
1: मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का अध्ययन कर लें और जो हमारे बीज है उनको चारित कर लें, तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
0: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग है ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताई है, मधुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता, उत्तर या ज्ञानी रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मधुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मर जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहाँ जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जालीनुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं, और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती है। अगर संक्रमण उग्ररूपी होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए जी, और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये

0: बिना किसी खर्च के हुए। और अगर हम बात करें रासायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है
1: जी
0: और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोवेट 0.25%
1: जी
0: और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में है, तो मेटालैक्सिल और मैनकोवेट इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और इसका इसकी मात्रा जो होती है 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोवेट को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी मैम, यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
1: यस,
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है और इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: जी।
1: और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारे जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक खाने की बात है तो देखिए इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं।
1: बिल्कुल मैम जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम टमाटर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है, तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहाँ पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से

0: है तो वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और
1: जी
0: उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो
1: जी
0: ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी खराब कर देते हैं। तो
1: जी बिल्कुल
0: इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इस
0: जी
1: बात
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए,
1: अच्छा
0: वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं,
1: जी
0: तो डॉक्टर की जो बताया वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जनक है जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोग जनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोग जनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हैं तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल भी लगाएंगे ना तो रोग जनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मतलब
0: उतना।
1: इसका ये कारण, मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है? मैम
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी जी
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढींचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर कर लेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर
0: जी
1: अगर
0: जी
1: देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर
0: जी
1: खरबूज और तरबूज की
0: जी
1: पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी
1: जी
0: चीज ये है, वहाँ रोग कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके
1: जी
0: अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहाँ जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी
1: अच्छा
0: पैदावार को कम कर रहा है।
1: जी
0: और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि
1: जी मैम
0: खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान इन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है,
1: जी
0: कम कर देता है या लगाना छोड़ देता है।
1: जी
0: तो
1: मैम
0: ये सारे कारण हो सकते
1: जी मैम
0: हैं सबके।
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर हम बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े

0: रहते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर महिलाओं की और खासतौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है,
0: जी मैम,
1: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है,
0: जी मैम,
1: क्योंकि हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है
0: जी मैम,
1: कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि
0: जी
1: जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
0: बिल्कुल मैम,
1: और
0: बिल्कुल
1: जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
0: जी मैम,
1: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए।
0: जी मैम,
1: तो लोग जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए
0: जी मैम,
1: तो पर्यावरण भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक जाएंगे।
0: कहीं ना
1: इसका जो
0: कहीं
1: है
0: हमने भी
1: इसका
0: मैम,
1: एक और
0: जी मैम,
1: जी विकल्प यही है कि शिक्षा,
0: जी बिल्कुल
1: आप
0: आपने सही
1: शिक्षित
0: बात
1: हो
0: कही है
1: और
0: कि
1: दूसरों
0: शिक्षा
1: को
0: एक
1: शिक्षित
0: ऐसा
1: करें।
0: विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ
1: क्योंकि
0: पर
1: जब आप
0: मैम ये
1: शिक्षित
0: आती है,
1: होंगे,
0: जी
1: जी, जब आप शिक्षित होंगे तभी आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
0: बिल्कुल
1: पाएंगे
0: मैम,
1: कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
0: बिल्कुल
1: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें
0: जी मैम,
1: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं और जंगलों को ना काटें,
0: जी मैम,
1: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं,
0: जी मैम,
1: तो उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो सकता है।
0: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भलीभांति जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
1: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
0: जी मैम,
1: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
0: जी मैम,
1: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
0: जी मैम,
1: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है,
0: जी
1: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या जो शादी करना है वो
0: जी मैम,
1: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम पाँगा जो कमाएंगे वो परिवार को दे जाएंगे। तो
0: जी मैम, जी मैम,
1: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
0: जी मैम,
1: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
0: जी मैम,
1: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
0: बिल्कुल मैम, जी मैम,
1: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई मिला नहीं जा रहा था,
0: जी मैम,
1: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
0: बिल्कुल
1: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
0: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते

0: हैं क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
1: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
0: जी मैम,
1: जल संरक्षण करें
0: जी मैम,
1: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके,
0: जी मैम,
1: उसे हम दंडक करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
0: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू मैम।
1: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपने ऊपर। जी धन्यवाद।
0: जी थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

सभी इंसान हाँ सभी इंसान।

अगर मैं चली जाती आप मुझे बुला कर देते, किसी गरीब के साथ हम भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत

बार होली है तो आपके आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।